0: महाठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिया कर डोले, द रोप हैव इन हैंड टू हैंग यू अप, बट टिल दैट सी हैव वेरी स्वीट लैंग्वेज, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, हाउ टू कैच यू, एंड देन यू आर होल्डिंग लाइक दिस स्नेक इन योर हैंड्स। सो दिस माया, दिस संसारास, देयरफॉर इट इज सेड पतन और उथन, दो बोथ हैज बीन सॉन। सो भगवान विष्णु सेड, लक्ष्मी देवी गॉडेस, लेट्स गो बैक टू अवर वैकुंठा, दैट इज मच बेटर, सम टाइम टू टाइम नो नारदा कम्स, दैट्स ऑल। एंड सो केम देयर एंड दे वेंट, सो बट बोथ वन सीड, सो द रूट्स आर इन वन, बट वाट इज प्राउड केम आउट, वन इज दिस एंड दैट। सो वाट इज दैट वन? One is called Sangha. Sangha means the company. Company. Now, which kind of company you have? Negative way or spiritual positive way? Now, this is called only one word, Sangha. Now in the one word, one letter, Sang. Now before Sang, if you write Sat, what becomes? Satsang. And if instead of the Sat you write Ku, what happens? Kusanga, bad societies. So root is there, but how now the branches will develop, this side or that side? So in the Kali Yuga is a very, very hard, difficult to get good Sangha. There is a lot of sweet words, there are a lot of tricks, but at end there will be nothing. So this one bhajan was Mahaprabhuji's, then I will not translate all, otherwise morning I have to serve you breakfast here.
1: Yeah, you miss your plane.
0: So therefore, sir.

सत्संग ओ सज्जन वाली लागे ओ सदाई सत्संग। ओ माय डियर वन, ओ माय फ्रेंड्स, आई लव सत्संग। श्रुति और स्मृति गावे, श्रुति व्हाट इज स्पोकन, स्मृति व्हाट इज इन मेमोरी। दिस इज फ्रॉम वेदास, श्रुति स्मृति। श्रोता श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय, दिस मेनी डेफिनेशन आई विल टेल यू आफ्टर। सुख बैंकुंठ स्वर्ग नहीं दुर्लभ, दुर्लभ है सत्संग। सुख बैंकुंठ स्वर्ग।

श्री अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय।

नमः। श्री दीप नारायण भगवान की, श्री सुदेव पुरुषा महादेव की, हिमालयन अवतार श्री अलक पुरुषा महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र उस दिव्य महान परंपरा ओम श्री अलकपुर जी सिद्ध पीठ परंपरा के सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वंदन करते हुए मंचस्थ महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज और इस परम पवित्र परम दिव्य आयोजन में जिसके निमित्त आयोजन है ऐसे हम सब के आराध्य भगवान श्री दीपनारायण महाप्रभु जी के उस दिव्य कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का दिव्य लाभ ले

इस सत्संग सभा में, इस सत्संग त्रिवेणी में, इस सत्संग की बहती गंगा में विराजमान समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन जो अपने अपने घर गांव परिवार को छोड़ करके इस अमूल्य दुर्लभ सत्संग का लाभ लेने आए हैं, घर भी बैठ सकते थे लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम भी सत्संग श्रवण करें, तो परमात्मा की परम कृपा से यह ऐसा अवसर आता है। कहते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा,

भाई, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पश्चात ऐसा समय आता है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, युग युगांतर के पुण्य एक साथ आते हैं, तब जाकर के हमें ये सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसे परम पवित्र उस दिव्य धाम में, जो समस्त वेदों का मूल, शास्त्रों का मूल, उपनिषदों का मूल ओमकार है, उस ओमकार की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो तो इसकी महिमा और अनंत गुना बढ़ जाती है। तो आप और हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ने हमको जो यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना, सो जाना, परिवार बढ़ाना, क्या यही उद्देश्य? नहीं, ये तो ठीक है। संसार में जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से पशु भी रहते हैं। पशुओं का भी परिवार होता है, वह भी परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अरे देखो, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली मौसी अपने बच्चे को सात घरों में ले जाती है, कितना पालन करती है, घर नहीं होता है, तो वो भी बच्चों का पालन करती है। और हम यदि अहंकार करने लग जाए कि बच्चों को पाल पोस करके हमने कोई बड़ा काम कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, हम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि संत चरणों में आकर के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भक्ति, उपासना, साधना, घर परिवार छोड़ करके नहीं, परंतु घर परिवार में रह करके ही करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष जिनकी हम आज 62वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम सबका जीवन भी उस दिव्य परम ज्योति की तरह उज्ज्वल हो, प्रदीपित हो, और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश आए गुरुदेव की कृपा से, कि हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाए। देखो, गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। बिना गुरु कृपा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। एक अज्ञानी मनुष्य था, वह न तो महात्मा को मानता था, न भगवान को मानता था, न संत को मानता था, किसी को नहीं मानता था। एक बार संत महाराज उस गांव में पधारे, और जा करके संत जब आते क्या करते हैं, संत आ करके भगवान से मिलाने का ही कार्य करते हैं। संत हमें परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है उस मार्ग को दिखलाते हैं। तो संत जी ने उस अज्ञानी व्यक्ति से जा कर के पूछा कि भैया, मैं तुमको कैसा दिखता हूँ? अब उसे न संतों से मतलब था, न किसी से मतलब था। उसने कहा, महाराज आप तो हमारे जो गांव में भूरा पाड़ा है ना, वैसे दिखते हो बिल्कुल। संत ने कहा, अभी इसका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, बिल्कुल मलिन है। संत ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा दिखता हूँ ठीक है, लेकिन तुम यह करो, मैं जो तुमको मंत्र दे रहा हूँ, भगवान का नाम सुमरण करने के लिए दे रहा हूँ, यह नाम सुमरण करते रहना। फिर संत जी एक साल बाद आए और पूछा, भाई अब कैसा दिखता हूँ? बोले, महाराज अब थोड़े मनुष्य जैसे दिखने लगे हो। संत जी ने कहा, ठीक है, जो मंत्र दिया है उसको निरंतर जप करते रहना, छोड़ना मत एक दिन भी, मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आता हूँ। कुछ समय बाद संत जी महाराज गंगा, हरिद्वार, काशी स्नान इत्यादि करके आए, और फिर उसको पूछा कि भाई अब कैसा दिखता हूँ? महाराज अब आप देवता जैसे दिखते हो। महाराज जी ने कहा, अब कुछ और जो है इसको अंतकरण पवित्र हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार और गए और जाकर के फिर वापस आए, तब उस मनुष्य ने आकर के क्या किया, सीधा दौड़ करके आया जैसे गुरुजी आए, और आकर के दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु आज तो साक्षात मुझे भगवान ही दिखते हो। तो महाराज वो अज्ञानी मनुष्य से ज्ञान कराने वाले कौन हैं? परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हैं, ताकि हम ज्ञान के प्रकाश में आकर के आलोकित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। देखो, सुखिया भाई बड़ा सुंदर भजन गा रही थी, और भजन गाने के बाद में दो सुंदर बातें कही इन्होंने। कहा, जो दो अवतार होते हैं भगवान आते हैं ना संसार में, तो किस रूप में आते हैं?
एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। तो नित्य अवतार अर्थात हमेशा भगवान धरती पर रहते ही है, तो अब हमें क्यों नहीं दिखते महाराज रहते हैं, तो क्योंकि हमारी वह दृष्टि नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि तम, जो अर्जुन है अर्जुन उसको भी भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं, तो दिव्य चक्षु जब देते हैं तब भगवान का विराट रूप दिखता है। तो एक तो नित्य अवतार के रूप में, दूसरे निमित्त अवतार के रूप में। तो निमित्त कब आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता हूँ मैं अवतार लेता हूँ। तो उस समय भगवान किसी न किसी कारण से अवतार लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं, वो हो गया निमित्त अवतार। और नित्य अवतार का महाराज जैसे हमारी परंपरा के दिव्य महान ऋषि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक धर्माचार्य श्री दीपनारायण महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुषों के रूप में भगवान नित्य इस धरती पर निवास करते हैं। और आज भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु जी के रूप में हमारे मध्य में साक्षात भगवान ही विराजमान है। बस हमको देखने की कमी है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। तो दो रूप में आते हैं, तो उसी रूप में संत जो भगवान के नित्य अवतार होते हैं। और महाराज संत भगवंत अंतर नहीं निरंतर, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल्पवृक्ष देखा आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ कल्पवृक्ष लगा हुआ है ना। तो एक व्यक्ति था अपना, उसके साथ में पुराने समय की बात है, सामान लेकर के जा रहा था। तो इसकी सवारी थी, घोड़ा था, और घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ था, लेकर के जा रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत थक गया महाराज, थक गया तो उसने सोचा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए गया और सोचने लगा, थक गया हूँ, थकने के साथ साथ भूख भी लगी है, यदि बढ़िया से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए तो महाराज क्या ही बात है। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, जैसी कल्पना की तुरंत कल्पना साकार हो गई और उसके सामने पंच पकवान आकर के रख दिए गए और तुरंत प्रसन्न हो गया और भोजन पा लिया। भोजन पाया तो महाराज अब भोजन के बाद क्या होता है, निद्रा आती कि नहीं आती। महाराज भोजन कर लिया, अब सोना है, आराम करना है। अब उसका मन हुआ आराम तो कर ले, लेकिन आराम करने के लिए कंकड़ है नीचे, कोई बढ़िया से खाट मिल जाए, हैं मखमल का गद्दा वगैरह, तो आनंद आ जाए। जैसी कल्पना की तुरंत बढ़िया जो है बेड आ गया, उस पर मखमल का बिस्तर आ गया और सो गया। सोने के पश्चात नींद आ ही रही थी, क्या थोड़ा पैर दर्द हो रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला आ जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। और जैसे कल्पना की सुंदर अप्सराएं आ गई पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, थोड़ी देर बाद वापस नींद खुली, कहा महाराज अचानक इस जंगल में मैं सो रहा हूँ, अकेला हूँ, सामान रखा हुआ है, शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या होगा। जैसे ही कल्पना की महाराज शेर आया और उसने शिकार कर लिया। बोले दीपनारायण भगवान ने की। तो महाराज परम पिता परमात्मा के रूप में जो सद्गुरुदेव भगवान आते हैं वे भी कल्पवृक्ष के समान ही है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। यदि हमको जो धन संपत्ति चाहिए तो सद्गुरुदेव भगवान क्या देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। सामने उदाहरण देखो बैठे हैं ये भाई साहब, हैं देखो इनके जीवन की घटना की हमको आश्चर्य होता है। लोग भी आश्चर्य करते हैं और लोग विश्वास भी जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन आज आपके सामने प्रमाण है, एक नहीं अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो साक्षात जिन्होंने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा की, आस्था रखी, विश्वास रखा, और जो जो कल्पनाएं की, जो जो मनोरथ किया, वह का वह मनोरथ पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। तो ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है, इसलिए हमको समझने की कमी है। ऐसे संत महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है। देखो एक बात बताएं आपको, संतों के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए, भगवान के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं महाराज, घर में रहते हैं ना, तो आज मंदिर जाएंगे या गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं,
एक हाथ लंबी, क्या क्या मांगना आज, और वो लिस्ट ले जा करके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये सारी लिस्ट आपके सामने है। करते हैं कि नहीं करते? लेकिन भाई उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी को क्या पता नहीं आपको क्या आवश्यकता है, बताओ? पता है ना। तो जब संत के पास में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो सदैव यही मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि सदकार्य में लगे, मेरे जीवन में सत्संग आए, मेरा मन प्रभु आप में ही लगे। यदि यही मांगोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही है। जो केवट था, जानते हो केवट कौन था? भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, उसमें नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए भगवान ने कहा केवट नैया लेकर के आओ। तो केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा प्रभु। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले प्रभु मेरी एक ही नाव है, इस नाव को आपने स्पर्श कर दिया, आपका चरण रज लग गया, तो महाराज ये नाव स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन जाएगी तो मेरे जो क्या दिनचर्या, जो रोजमर्रे की जो क्या जीवन चलाना, गृहस्थी चलानी है, वो कैसे चलेगी? एक ही नाव है, और दूसरी बात एक स्त्री है ही मेरे घर में, मेरी पत्नी है ही है, और दूसरी और स्त्री होगी तो पालना मुश्किल हो जाएगा, परिवार को कैसे पालूंगा? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं। बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपकी लीला, आपने पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई, ये तो लकड़ी और कमजोर है। तो बाद में कहा कैसे लाओगे? प्रभु आपका यदि चरण रज मुझे दे दें आप धोने के लिए, तब जा करके मैं नाव लाऊंगा। और भगवान ने बात मानी, चरण धोया, नाव में बैठे, पार गए। पार जैसे गए तो अब जब जाते हैं तो महाराज कुछ देना ही होता है, आपको कोई उस पार ले जा रहा है तो नाव वाले को कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कुछ दिया जाए, भगवान के पास कुछ है नहीं। भगवान सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सच्ची पत्नी वही है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। पति की क्या परिस्थिति है, सुख में भी तो भी साथ रहे, दुख में भी तो भी साथ रहे। तो माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए, अपनी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को उतार करके दे दिया, स्वामी यही इस नाविक को उतराई दे दीजिए, आने जाने का किराया हो जाएगा। जैसे ही भगवान देने लगे तब केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब

0: सिया राम। उस केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों क्यों नहीं चाहिए? भाई आपका कार्य क्या है? इस पार से उस पार ले जाना, और ले जाते हो तो उसके बाद क्या होता है? आपकी पेट पूर्ति होती, परिवार चलता है। कहा प्रभु जो मेरा कार्य है आपका भी वही काम है। आप भी क्या करते हो? इस भवसागर से पार करते हो और मैं भी इस किनारे से उस पार करता हूँ। प्रभु मैंने आपको इस किनारे से उस पार किया है तो आप भी क्या करना? मुझे उस पार कर देना। यही मेरी उत्तर है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सज्जनों, गुरुदेव भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, तो यही मांगो, ये याद कर लो चौपाई। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब बस आपका अनुग्रह ही चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और कुछ धन संपत्ति दौलत मुझे नहीं चाहिए। आपकी कृपा से पल रहा है, सब काम चल रहा है, बस यही है कि मेरा मन विचलित हो रहा है। इसलिए से मन को शांत कैसे करें? प्रभु आप कृपा करें, मेरा मन लग जाए। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी इस परम पवित्र सत्संग सभा में आए हैं, और आकर के इस दिव्य सत्संग सभा के जो हीरे मोती है, क्या है? हीरे मोती है, अनमोल रत्न है, ये बार बार मिलने वाले नहीं है। देखो हमेशा नहीं मिलते हैं, बाबा जी की कृपा से आप लोग जुड़े हुए हैं, और साल में दो तीन अपने ऐसे अवसर आते हैं, और उसमें भी यदि छुट्टी मार दोगे तो महाराज इसका फल मिलने वाला नहीं है। ये परम पवित्र और परम दुर्लभ भी है। तो इस दिव्य सत्संग सभा का आप लाभ लें, आनंद लें। भजनों का आराम तो करना ही है, सोते सोते आधा जीवन बीत गया, आधा और बीत जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए आए हैं तो दिव्य आनंद ले जब तक शरीर साथ दे। एक दिन की बात है, बाकी की हमेशा रात ही रात है, सोना ही सोना है। इसलिए आज दिव्य आनंद ले। दीपनारायण भगवान की। अब थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल दें, बाबा जी की कृपा से थोड़ी भाषा आई, ये भी लोग सज्जन गुरुभक्त बैठे हैं। तो सैल्यूटेशन टू द डिवाइन, ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा। आई वुड लाइक टू बो हिज होलीनेस अवर बिलव्ड गुरुदेव विश्व गुरु जी होली फिट ऑन द डिवाइन ओकेशन ऑफ महाप्रभु जी एनिवर्सरी। वी आर हैविंग डिवाइन सत्संग ऑन बिहाफ ऑफ महाप्रभु जी डिवाइन डे, समाधि डे। एंड वी ऑल आर सो फॉर्चुनेट वन, लकीस्ट वन, दैट वी आर हैविंग दिस सत्संग इन ओम आश्रम, विच इज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ योगा इन डेली लाइफ। हियर अवर डियर ब्रदर महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, ऑल डियर भक्ताज, ऑल द सन्यासीज ऑफ दिस परंपरा। आई वुड लाइक टू से हरिओम टू एवरी वन एंड वेलकम टू दिस डिवाइन सत्संग। विद द ब्लेसिंग ऑफ विश्व गुरु जी वी आर हैविंग सत्संग एट भक्ति सागर। वी हैव गॉट ऑल्सो ब्लेसिंग ऑफ विश्व गुरु जी टूडे इवनिंग। ही वॉज हियर, ही वॉज ब्लेसिंग अस, वी हैड प्रेयर विद हिम, एंड देन ही सेड ओके यू डू सत्संग, आई एम गोइंग सिटिंग देयर, ब्लेसिंग फ्रॉम देयर। सो विश्व गुरु जी इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज गिविंग ब्लेसिंग वेर एवर ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अस, ही इज ऑलवेज थिंकिंग दैट वॉट माई भक्ताज चाइल्ड डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। सो विद हिज ब्लेसिंग वी आर ऑलवेज डूइंग, और वी आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग दैट वी डू ऑलवेज गुड। सो द डिवाइन सत्संग वी आर हैविंग हियर, यू नो द ग्रेट ऋषिज, ग्रेट सेंट्स, दे कम ऑन दिस अर्थ नॉट फॉर देम सेल्फ, बट दे कम फॉर द ह्यूमन बींग, फॉर द क्रिएचर्स हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, विच इज ऑलवेज वेरी हार्ड। वी आर ऑलवेज ट्राइंग आवर बेस्ट टू एस्केप फ्रॉम दिस साइकिल, दैट वी कैन लिबरेट, वी कैन नो अवर सेल्फ फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन, बट विदाउट गुरु, विदाउट डिवाइन सेंस विदाउट परंपरा वी कैन नॉट नो एनीथिंग. सो वी हैव गॉट अ ग्रेट ऋषि और वी आर बिलोंगिंग टू द ग्रेट परंपरा विच हैज गिवन अस द ग्रेट सेंस एंड दैट सेंस दे आर शोइंग द डिवाइन पाथ. सो महाप्रभु जी इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज शोइंग द वे. यू ऑल हैव मैनी टाइम हर्ड और यू हैव एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ दैट हाउ महाप्रभु जी इज गाइडिंग अस इन एनी वे. आई हैव हर्ड मैनी स्टोरीज फ्रॉम द यूरोप दैट वन कपल दे वर गोइंग थ्रू द कार इन द जंगल एरिया और समवेयर बट दे हैव फिनिश्ड द पेट्रोल और डीजल समथिंग एंड दे कूडंट गो फर्दर एंड देन दे वर रिमेंबरिंग विश्वगुरु जी एंड महाप्रभु जी प्लीज हेल्प अस हाउ वी विल गो टू द होम इट्स डार्क ऑलरेडी एंड नो बडी इज हियर देर इज नो पेट्रोल पम्प नियर अस सो प्लीज गॉड हेल्प अस एंड सडनली सम गाय केम देयर विद द डीजल और पेट्रोल ही गेव देम दिस थिंग एंड दे वर फीलिंग एंड दे हैव गॉट दिस थिंग ऑयल एंड नाउ दे ड्राइव दे वर ड्राइविंग द कार टू द होम सो दिस इज द ब्लेसिंग वेन दे सो आफ्टर वन मिनट देर वॉज नो बडी सो दिस इज द डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ महाप्रभु जी वेन यू हैव अ प्योर प्योर भाव प्योरिटी वेन यू हैव द श्रद्धा विश्वास बिलीव देन इट कम्स टू यू सो महाप्रभु जी इज ऑलवेज गाइडिंग अस ही इज ऑलवेज गिविंग द डिवाइन ब्लेसिंग्स. आई वॉज टेलिंग दम स्टोरीज अबाउट गुरु कृपा अबाउट गुरुदेव दैट विदाउट गुरुदेव वी कैन नॉट लिव इन दिस लाइफ. विदाउट गुरुदेव वी डोंट नो वॉट टू डू हाउ टू डू वेन टू डू. सो वेन गुरुदेव कम्स इन अवर लाइफ ही शोज अस ईच एंड एवरीथिंग. सो आई वॉज टेलिंग स्टोरीज दैट देर अ सेंट वॉज देयर he was going to a village and there was one person who was not believing in a god in a saints. He was just living life like a animal, you know. What does animal eating, sleeping, having children, this life is animal having. So he was also living like that. So one saint was there, he was thinking that I should give him some knowledge, I should bring him to the God. So he went there and he was asking that, oh human, do you know how do I look, who I am? Then he told, you look like a buffalo, which is in our village. Then that saint thought, still his heart is not clean, he's suffering very hardly, so I should tell him some mantra. So he gave a mantra and he just told, just chant it till 1 year, till I come back. And after 1 year he went back there. Then he was asking again, so how do I look now? Then he said, okay, yes, now you look like a human. Okay, that saint was happy that mantra is working, he is chanting the mantra, so it's becoming slowly clearing his heart, his thinking, his doing. Okay, he said again, okay, I will go and I will come back after some time. So after some time when he came, then he was asking again, how do I look now? Then he told, now you're looking like devas. What do you say, devas? God. Then he, next time when he comes, fourth time, then suddenly when he saw the Guruji, he was not looking. He came and he ran. He just make a dandavat pranam. Oh Gurudev, thank you. Now you are not a human. You are not a human body, but you are God. You have shown me the divine way, divine knowledge that I can now see each and everywhere God. So that is Gurudev. He bringing us from the ignorance to the knowledge, from darkness to the light. So with the blessing of Gurudev, we are also coming to the light. We are also going near to the God. So this is only possible with the blessing of Gurudev. So we all are luckiest one. We are having the divine master in our life. and we should always follow what Gurudev is saying, what he is guiding us, how he is guiding us. So that's why we always thankful to the Gurudev. Please Gurudev, always bless us and guide us in a divine way. So thank you for listening. We are having divine satsang on the occasion of Mahaprabhuji's anniversary. So we will have now some bhajans. We have Sukhya Bhai here, Papuji Garg, all the bhaktas, Indian bhaktas here, Devilal ji, Narendra ji, and all children from our school, college, Indian bhaktas here, all karma yogis. So enjoy satsang. Deep Narayan Bhagavan ki, Dev Purishama Dev ki. And I forgot our music teacher, Ashok ji. He's singing very nice, very beautiful bhajans of our parampara, and he's always coming here. So welcome to Divine Satsang, and we will also listen to him. Deep Narayan Bhagavan ki jai. Papu ji garg, kaun gayenge bhajan? Aiye gaiye aap log bhajan. Haan, bhai ji gao.
1: बोलिए सदगुरु भगवान की।

हरि ओम। सभी भक्तों ने प्रसाद पाया भाई? सबने प्रसाद पा लिया? हाँ, तो प्रसाद ही बनाने की जो सेवा में लगे हुए हैं अपने गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री पृथ्वी सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, वे हमेशा जो है भगवान की कृपा से सत्संग का लाभ तो कम लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो है क्या कहते हैं ना, भोजनामृत का, प्रसादी का लाभ देते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी भक्तगण आए हैं, आप लोग प्रसाद लेकर के आज की रात्रि तो कम से कम जब तक शरीर साथ दे तब तक क्या करिए, सत्संग का श्रवण करिए। हमेशा हमेशा तो मिलने वाला है नहीं, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से जो मिला है, जो मिला है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, सत्संग में। सत्संग का तात्पर्य क्या है, सत्संग, सत अर्थात सत्य, जो सत्य है उस सत्य का संग करना, उस सत्य के साथ रहना, उस सत्य के साथ जीना, उस सत्य के साथ चलना, यही क्या कहलाता है, सत्संग। तो सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, आप सत्य मानते हो ना कोई चीज़ को, तो किसे कहते हैं सत्य, सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक समान रहती है, जो कभी बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सत्य। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और वो बात बदल गई कि पहले तो आपने ऐसा कहा था अब ऐसा हुआ नहीं, तो वो सत्य कहलाएगा नहीं, जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में एक समान कौन रहता है, क्या आप, हम, जो सब दिख रहा है, झूपा है, ये शरीर है, ये मंदिर है, ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन यह वास्तविक सत्य क्या है। देखो आप स्वप्न देखते हैं, हाँ देखते हैं स्वप्न, तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हाथी घोड़ा आया, बैठ करके गए बढ़िया से, सब देवता सामने आए, और जैसे ही नींद खुली तो स्वप्न टूट गया, तो फिर क्या कहते हैं, ये तो सत्य नहीं, सपना था। उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, सपना है। कौन कह रहे हैं सपना है, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, भगवान शिव कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं,

जय जय राम। भगवान शिव कह रहे हे उमा हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। भगवान शिव अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, भगवान का भजन, भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब ये तो जगत क्या है, सपना है। महाराज सपना कैसे हैं, कैसे सपना बताओ, सामने तो दिख रहा। महाराज सपना वो होता है जो हो दिखता पर होता नहीं है, पर यहाँ तो दिख भी रहा हो भी रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ। सामने हम बोल रहे तो सत्य दिख रहे कि नहीं दिख रहे। लेकिन सपना कैसे हैं कि जैसे ही यह समय बीत जाएगा, कौन सा समय, जो समय चल रहा है वर्तमान समय में, तो मैंने कहा तीनों कालों में, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन काल होते हैं, तीन काल की सत्ता होती है। तो क्या यह तीनों कालों में है, क्या 100 वर्ष पहले आश्रम था, 100 वर्ष पहले हम लोग थे क्या यहाँ बताओ, 100 वर्ष पहले थे इस शरीर में, नहीं थे, तो भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में है, और आगे भी पता नहीं 100 वर्ष बाद रहोगे क्या। जो तीनों कालों में नहीं है वो क्या है, असत्य है, और जो तीनों कालों में भगवान पहले भी था, अभी भी भगवान है और आगे भी रहेगा। कहाँ भगवान, परमात्मा के जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, परम पिता परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। किसमें, संपूर्ण जगत में। एक प्रश्न भी उत्तर भी है, क्या है बोलो, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, और उत्तर भी यही है, कण कण में भगवान है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को सदैव स्मरण करते रहो, सदैव याद करते रहो, सदैव भजन करते रहो, तो महाराज बेड़ा पार है, नहीं तो इधर से उधर आर पार तो होना ही है। बोले दीपनारायण भगवान की। अब अपनी मधुर वाणी से पप्पू जी गर्ग आपको भजन सुनाएंगे। हमारे गुरु भक्त अशोक जी आप भी इधर आ जाएं, गणपत जी आप भी, और बैठ करके दिव्य प्रकार से भजनों का आनंद हम सबको प्राप्त कराएं।

हरि ओम। माता जी लोग, आप लोग थोड़ा विराम करो, फिर बाद में सुबह फिर गाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? अभी भजन मंडली आई हुई हैं, इनको भी थोड़ा अवसर दे देते। तो अभी अशोक जी चौहान अपने सुमधुर कंठ से बाबजी के भजनों के द्वारा हम सबको आनंद प्राप्त कराएंगे। अशोक जी चौहान, आप हमारे गुरुकुल में संगीत के अध्यापक भी रहे हैं और बाबजी की कृपा से, माँ प्रभु जी की कृपा से आपने स्टेट लेवल तक भी संगीत के माध्यम से अपने प्रतिभा को जो है राजस्थान का नाम उजागर किया है, राजस्थान के नाम को जो है वहाँ तक लेके गए हैं। तो सब बाबजी की कृपा है। और यहाँ का इतिहास भी सुनाऊँ मैं आपको, तो यहाँ इस आश्रम में जब से मैं बालपन से अध्ययन कर रहा हूँ तब से अनेकों अध्यापक आए हैं और अनेकों अध्यापकों ने एक दो वर्ष इस आश्रम में निवास किया, रह करके सच्ची श्रद्धा से ईमानदारी से पढ़ाया। और जिन लोगों ने बाबजी पर विश्वास किया, आस्था रखी, ऐसे 50-60 अध्यापक टीचर्स मैं जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट में जॉब लगी, ये सब बाबजी की ही कृपा है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपकी सुनता है और आपके मनोरथ को पूर्ण करता है। तो उसमें से हमारे आदरणीय गणपत जी, आप भी जो है बहुत वर्षों तक आपने अध्ययन कराया और अभी वर्तमान में आप जो है सरकारी में जो है अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सुंदर प्रकार से केमिस्ट्री इत्यादि का अध्ययन कराते हैं। तो बाबूजी की कृपा बरसती हैं, बस लेने वाला चाहिए। परमात्मा तो क्या करता है, वर्षा करता है। अब आपके पास कितना सामर्थ्य है, लोटा लेके जाओगे तो महाराज लोटा भरोगे, थाली लेके जाओगे थाली, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। तो आइए हम लोग सुनते हैं अशोक जी चौहान को। दीप नारायण भगवान की जय।

हलकपुर जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव, दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन दार, ओम शांति शांति, शांति।

0: या विच
1: श्री दीप नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव की अलकपुर जी महादेव की जय। 11 times reciting the Om.
2: 11-szer Om lesz.
1: There are different centers.
2: Vannak különböző központok.

काली चतुर्भी वो सतगुरु भगवान की जय। पाशीपति विश्वनाथ नित्य प्रति सर्व प्रकार से बड़े उच्च वृत्ति से विशुद्ध वृत्ति से जो उसी ब्रह्म रूप में निपायमान रहते हैं उन महान सद्गुरुदेव के चरणार विंद में कोटि सत नमस्कार करके ये सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति मोति सह सो हम स्वाहा। ओम ह्यम हम सो हम स्वाहा। ओम ह्यम हम सह सो हम स्वाहा। सर्वर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देव कर रहा हूँ वो हमारे सारे मनोरथ को सिद्ध करे। ओम अग्नैर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम अग्नैर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम अग्नैर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम ह्रीं ऐं त्रैलोक्य मोहिनी चामुंडा महादेवी सुरासुर वंदनी ह्रीं ऐं स्वाहा। ओम क्लीं कानेन्दी भेदनाय अग्नैर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम अग्नैर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। परानं महाकालकालं कृपानं गुणांगार संसार।

0: शांति ही शांति शांति।
1: विश्वागुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

दीप नारायण भगवान की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलग।

श्रीदीप नारायण भगवान की जय, सुदेव पुरुष महादेव की जय, हिंदुदारम साम्राज्य श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरु देव की जय, विश्व गुरु परहंस श्री स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।

0: महाप्रभु जी की जय। श्री हिंदू धर्म साम्राज्य श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देव की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्रीदी विश्वर महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी महेश्वर

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवनांची गुरुदेव की जय। विश्व गुरु जी श्री स्वामी महेश्वर नांची गुरुदेव की जय।
1: श्री देवनारायण भगवान की जय।